माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा हुण विखा अपना बगीचा, ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा है एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा है हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नू पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटां विच। ऐ मनुख

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला का दूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्भिख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी क्यों उर्ज पहा मोहन ठगौरी

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए। कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संजम रहे कर्मी कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए। कित संजम तोता जाए मन तो शब्द लागो आसो रहो चितला। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाई।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जीदान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जीदान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इत्थो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वधिया होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेबे जर साहेबे जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सर्रार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सर्रार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला इसम फाइल। ते सर्रार सिर वाहद सर्रार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सर्रार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सर्रार गुरु गोबिंद सिंह। बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी ही राज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने ओना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने ओना दी ता गल की करनी है। ओना वल ता है प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है। जिन्हां विच लचक ना होवे लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है। जड़ां गजा दे जांदियां ने हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा। समझो कि मर गई अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखीए ते कमाल दी गल है इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तो तेरी होंद तो इनकारी ने उहनां नू भी तू अपने गैबी खजाने विचों वड़ मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक स्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है जो ते तो मुनकर ने तेरियां दातां भी ले जांदे ने तेरियां बख्शियां भी मानी जांदे ने। हे मुने परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मानी जांदे ने ते तो मुनकर भी ने पर फिर भी तू उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने के मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है मैं हुण निश्चा कर लिया है के दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा मेरे गुरु ने मैनू सोझी पुआ दिती है। गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है के परमेश्वर ही वड्डा दाता है ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो कौन है इसते मुकाबले दा दाता साचा साहिब है ते वड्डा दाता है उसदे भंडारे अखुट ने। वाह
मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए। कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है। जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घरां दे अग्यों दी आया, बीबियां माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहन नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्ताक मेरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है। किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं। ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है पे इथे अगे आ जा, तुसी ता कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना। जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म। जाप साहब कई बारी अरदासा करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासू दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदों तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपके तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे।

उनको सब मेरा बेदी जो गौरी ग्वाले दी सतगुरु जी ने इसरा को गुरु ग्रंथ साहब के बीच तीजा स्थान दिता है। ये भी बहुत बड़ा राग है गुरु ग्रंथ साहब के बीच गौरी ग्वाले दी अते मारू दो राग सतगुरु जी विच बहुत बड़े बहुत बाणी विचार में किते जिला राग है विच आओ ये शाम दा राग है गौरी ग्वाले दी जब बोली सब शब्द नो मेरे जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल देश संदेरिया सतगुरु जी ने गौरी द्वारे विच उच्चारण

sewa perbankan tentang hidup itu diakui. Dunia dikembangkan dan diakui seluruh televisi milik Abi. Guru terbaru di Bishad di Pariya, ketepun Abi ini anda punya kiwitan raga di Bishad. Guru terhadap Sabi Maria dan Sar, Guru terhadap Sabi Maria dan Sar, Sarwan kita hai, Sultanta Dek, Aau Ante Dek Bich, Sarwat Mai Bhai, Kitne Guru Chanaj Baitu Ho, Choriyaan Kei Ardaas, Inti Chaudhari Kani Hai, Sadhu Dadya Ki, हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साढ़े छोरिया अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजिया कोई उस ना खाजना जाए।

जिनकी कुल मूढ़न की महा, जिन्हां दे कुल खानदान अनपढ़ सन, मूढ़ सन, उन्हां नूं पढ़ा के गुरुदेव ने निर्मले संत बना दिता। जिनकी कुल मूढ़न की महा, अखर भेव न जाने कहा, से पंडित तब पढ़ पढ़ बने, निज समता किसको ने गने, इम गादर पे शेर बनाए, बायस हंस चाल सिकराए। जिदरा तू शेर ते कावां तू हंस बना दिता,

हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हो बुल बलहारी गुर आपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा धार।

जैसे अपराधी अगर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर

होते जन्म परम में तो सदगुरु सब सुनाया सदगुरु जय बरदाता को नहीं सब सुनियो लोग सुवाया सदगुरु मिले सच पाया जिन बिचो आप गवाया जिन सचो सच